पख पगेका राजा पुनाइ खुडा लगत पुलाउ सब मचम विन्डो नि तु खबर रागिन छरि था मेरिया घरन सिमा सिरिंगेत बलेशा लबी महाल धरे रुफिया लेन बिलो द विन्ड।